एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवां, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा। जा कै सिमरन कछ पौ ना ब्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवां, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ। साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करने आधारी। काम क्रोध लो मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी। कहो नानक कहो तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। सूही महला पंजवां, लोभ मोहे मगन अपराधी, करनहार की सेवना सादी। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोह निर्गुणियारे। रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची बेमान ख्या अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरनाया। सूही महला पंजवां, पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त कौ जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सो किश कर जित छुटै परानी, हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ। घोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारे कछु न जाता। रखे पोचार माटी का भांडा, अत कुचीर मिले जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोहे बादा, महागर्त में निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जै, डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवां, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इउं दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ। एक बिना दूजा नहीं जानै, घटघट अंतर पार ब्रह्म पिछानै। जो किछ करै सोई भल मानै, आदि अंत की कीमत जानै। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कै हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवां, गुर परमेसर।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ जीवत मरत निहचर पावे थाओ सो साहो सेव जे टोट ना आवै खात खर्चत सुख अंध विहावै जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम ते आया सुही महला पंजवा गुर पूरे जपहे दयाल दुख बिन से पूर्ण पई काल पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न सके तीने ताप निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे नानक मांगे दान प्यारे सूही महला पंजवां से संजोग करो।

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चहारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पाप तजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, घर का काज ना जा।

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई करवासना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां कर चौथा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हार जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवां हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई। तज मान सरणी परो हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो जन का संग मांगो। नानक तो प्रभ दया कर दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां कर पंजवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवां रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा बरन चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवां तौ मैं आया सरनी आया भरोसै आया कृपा आया। ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया कर रो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया पावक सगराया गही ओढ़ साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवां कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर पास बेनंतियां मिले नाम आधारा तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ।

नहारा। भगत तेरे सब प्राण पद प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाह अपारिया ति ऊचा, कोई अवर ना तेरी पत। ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रहन सास सास गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा। नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठै पावा।

मेरे राम हौसो थान पालने आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरै बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवदूता तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवां, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरिया, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरिया। रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर ली जै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवां, जो किश करै सोई प्रमानै, ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जेवड ना कोई, भगतां बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई। रहाओ कोट अपराधी संत संग उधरै, जमता कै निर्णय आवै, जन्म

पावै। जन की महिमा केतक वर्णा जो प्रभु अपने पाणे, कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे।

ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां, सगल त्याग गुरसरणी।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौ तरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जिस दया करे प्रभ आपे, दीन दयाल किरपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर किरपा अपना नाम दीजै, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब अवगुण में।

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबर है बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारिया सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना विसर निदारा आधार जियो सुही महला पहला काफी कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रत्ता मन मानिया गुरपूरा पाया हौं जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद पावसी मैं दीजे नाम निवास हर गुण गावसी सुही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आई है मिले तुझे रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है तू देखे थापो थाप दर भी नाई है

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मनसदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नवनिध पाई गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावै आपे तोलन हारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइए नाही नाम पाइए गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया के री दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पायर चन, तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यो सगले कुल डोबन, निंदा पली किसे की नाही मनुख मुग्द करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा

आए सतगुर नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़ै दर सच्चे दे सन से भाई से सज्जना जो सच्चा सेवन अवगण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुखी उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंजै गुर शब्द स्यों लहा नाम लयेन सोइना रूपा पाप कर कर संचिया चले ना चल दया नाल विणना वै नाल ना चल सी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हिरदय रखो संभाल एहो खर्चा खुट है गुरमुख निभै नाल ए मन मूलो भुलिया जासै पत गवाए एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमति सच ते आए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर सों रह समाए सो सहो मेरा रंगला रंगे सही सुभाए कामन रंग ता चढ़ै जा पिरकै अंक समाए चिरी विछुन्ने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निद नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन ना ओ जन्म ना मरे ना ओ दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़े जे अंदन मिले रहन इस जग मैं विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है किद बिद मिलिया जाए गुर कै शब्द परम कटी है अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहारण है मन हर गुण सुधार वन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याय न रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होवै लिखिया गुर पाणा मन लयन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वेखा लिया प्रभ आत ब्रह्म पछान सब ना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोह माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए सेवा सा प्रभावसी जो प्रपाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चतलाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करै ता सतगुर मेलै हर हर नाम ते आई रहाओ जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख पी तुझे ते आई जे भुख देहे ता इतही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिने अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया करनावा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लायन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यो प्रीत न टुटई, कबो न हो वै भंग जियो। पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपै मन मित जियो रहाओ। देखे सुने न जानई, माया मोहया अंध जियो। काची देहा विनसनी, कूड़ कमावै तंद जियो। नाम ते आवै सेजन चले, गुरपूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै, तिसे विछोड़ा सोग जियो। अपने प्रभाणिया, दरगह पैंदा जाए जियो। एथे सुख मुखी उजला, इको नाम ते आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। थान थनंतर रव रहया, सर्व जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचया, एक नाम तन माल जियो। मन ते कहो न विसरै, जा आपे हुए दयाल जियो। आवन जाना रह गए, मन उठा निरंकार जियो। ता कायंत न पाईऐ, ऊंचा गमिया पार जियो। जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जमै लख वार जियो। साच ने हो तिन प्रीत मां, जिन मन उठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेसर, बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार, तू है एकानेक जियो। तू समर्थ तू सर्वमय, तू है बिद विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां काफी। एको अंकार सतगुर प्रसाद। जे भुली जे चुकी साई, पी तहिंजी काढ़िया। जिन्ना नेहो दू जाने लगा, चूर मरो से वाडिया। हाओ ना छोड़ाओ कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा। एहो महिंजा आसरा रहाओ, सज्जन तू है सैन तू। मैं तुझ ऊपर बहु माणिया, जा तू अंदर ता सुखे, तू निमाणी माणिया। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वे खाल। एहा पाई मुदा तड़ी, नित हृदय रखा समाल। पाव जुलाई पंदताओ, नैनी दर्श दिखाल। श्रवणी सुनी कहानियां, जे गुरथी वै कृपाल। किती लख करोड़ प्रिय, रोम न पुजन तेरिया। तू साही हूं साहो, हाँ कह ना सका गुण तेरिया। सहियां तऊ असंख, मन्यो हब वदानिया। हिक पोरी नदर निहाल, देहे दर्श रंग माणिया। जय डिठे मन तीरी है, किल विख वंजन दूरे। सो क्यों विसरै माओ, मैं जो रहा पर पूरे। होए निमाणी टह पई, मिलिया सह सुभाए। पूर्व लिखिया पाया, नानक संत सहाए। सूही महला पंजवा, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया। नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। नाम निदान अपार, भगता मन वसै। जन्म मरण मोह दुख, साधु संग न सह रहाओ। मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया। सुख ना पाए न मूल, नाम विशुनिया। मेरी मेरी तार, बंधन बंधिया। नरक सुर्ग अवतार, माया तंदिया। सो

राग सुही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अमावन डोसड़े हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दू एक चढ़न दिया कौन जाना मेरा नाओ जियो जिन्नी सखी सौरावे से अंबी शावड़ी यह जियो से गुण मंजना यावनी हो कह जी दोस्त रेव जियो क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो एक तटोल ना अंबड़ा हो सतगुर बाणा तेरे जाओ जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यो लाया चित जियो मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा अस जियो हौ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहोरे क्या मोह देसी अगे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो तै सह नालो मुक्ति अस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सवराती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी राह जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू मंत्र साबाह जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीखो दास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो पाणे सह पीहावला यावन जान मुइयास जियो तू सौ अगमा तोलवा हों कह कह टह पियास जियो क्या मांगा क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुर शब्दी सह पाया सच नानक की अरदास जियो सूही महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस

चल कै मैं तकी तौ सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। इं पावे हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो, हाँ आपो बोल न जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुर नानक किया पसाओ जियो, मैं बहुड़ना तृष्णा पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आगाए जियो। जो गुर दिसै सिखड़ा तिस निम निम लागौ पाए जियो। राग सूही संत महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पर जोबर मैं मत पे यड़ै कृपा हुनी बलराम जियो। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो। गुण सार ना जानी परम पुलाणी जो बनबाद गवाया, वार कर दर दर्शन नहीं जाता फिरका सहज ना पाया। सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी, नानक बाल तन रा डेपा बिन फिर तन कुमलाणी। बाबा मैं वर देहे मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो, रव रहे जुगचार त्रिपवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिपवन कंतर वै सोहागण अवगणवंती दूरे, जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागणो रांडना मैं लेवे से, नानक मैं वरसा चा पावे जो जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम्पी वहीं साहुरै बलराम जियो, साहा हुक्म रजाए सो न टले जो प्रभ करै बलराम जियो। किरत पया करत कर पाया मिट न सकै कोई, जानी ना नरै ने केवल रव रहा त्यो लोई। माए निरासी होए विशुनी बाली बाले हेते, नानक साच शब्द सुख महली गुरचरणी प्रभ चेते। बाबल दितड़ी दूर ना आवे कर पेई है बलराम जियो, रैसी वेखा दूर पिर रावी कर सोही है बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदाने, संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए, नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए। राग सुही महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई जैसे ती मन लाया। आन दिन मेल पाया मन मानिया कर मंदिर सोहाए, पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम कर साजन आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहे लड़ा जुगचारे। अपने करे आया थान सुहाया कार्ज शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत् विचारो। जंत पेख तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारो, तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोहया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा अगम्या पारा तुद बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए। काल बिकाल पहे देवाने मन राख्या गुर ठाए, नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए। राग सुही महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आवो सज्जना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर अपन खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम।
ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨਹਿ ਕੇਵਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ, ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਐਸਾ ਚ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਏ। ਕਰ ਆਏ ਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾਂ ਤਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ, ਹਰ ਮੋਹ ਅੜੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ, ਠਾਕਰ ਦੇਖ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਸੰਗ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਰੰਗ ਰਾਤੈ, ਅਵਗਣ ਮਾਰ ਗੁਣੀ ਕਰ ਛਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੈ। ਤਸਕਰ ਮਾਰ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਣ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ। ਵਰ ਪਾਇਆੜਾ ਬਲ ਲੜੀਏ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ, ਪਿਰ ਰਾਵਿਆੜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਲੀ, ਰਵ ਰਿਆ ਨੈ ਦੂਰੀ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਘਟਘਟ ਸੋਈ, ਤਿਸਕੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਮਰਿਆ ਡੋਲਿਆ ਮੋਲਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸੰਜੋਗੀ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਈਐ। ਪਿਰ ਉਚਰੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ, ਤਿਹ ਲੋਵਾ ਸਿਰ ਤਾਜਾ ਰਾਮ, ਹਉ ਬਿਸਮ ਪਈ ਦੇਖ ਗੁਣਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਿਆ ਗਾਜਾ ਰਾਮ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੀ ਸਾਣੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਠਾਹਰ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਪਛਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਨਾਸੀ। ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਗਤ ਹੰਦੜੈ ਲਾਇਆ, ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੜ ਚਾਨਣਾ, ਤਨ ਚਾਂਦੀ ਪਾਇਆ, ਚੰਦੋ ਦੀ ਪਾਇਆ, ਦਾਨ ਹਰ ਕੈ, ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋਹੈ, ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਆਂ ਲਿਆ। ਵਿਵਾਹ ਹੋਵਾ ਸੋਭ ਸੇਤੀ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦੀ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਗਤ ਹੰਦੜੈ ਲਾਇਆ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ, ਇਹੋ ਤਨ ਜਿਨ ਸਿਉ ਗਾਡਿਆ, ਮਨ ਲੀਅੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਆ ਤਾਂ ਦੀਆ ਮਾਨ ਜਿਨ ਸਿਉ, ਸੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਦਿਸ ਆਇਆ ਹੋਹੇ ਰਲੀਆਂ, ਜੀ ਸੇਤੀ ਗੈ ਰਹਿ। ਸਗਲ ਗੁਣ

कड़वास लई जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जै सांझ करी जै गुण केरी छोड़ अवगण चलिया पहरे पटंबर कर डंबर अपना पिण मलिया जिथे जाए बहिया पला कहिए चोल अमृत पीजै गुणा का होवे वासला कड़वास लई जै आप करे किस आखिए होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे पुलड़ा होई जे होए पुला जाए कहिए आप करता क्यों पुलै सुने देखे बाज कहे दान अण मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई आप करे किस आखिए होर करे ना कोई सूही महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इस नाम दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों शले पर पंच मोह बेकार था के कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सा लाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैले है किने अमृत पिया मथे अमृत पिया एह मन दिया गुर पै मोल कराया आपरणा प्रभ सहज पछाता जा मन साचा लाया तिस नाल गुण गावा जित पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो सा लाही है जिन जगत उपाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम से मन मानिया हर से तीराता साहेब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच पू नायको आप से रंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगणयारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आवन जाना नाथी है साची मत होई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर पावे

जिस तू मिले सो तुद मिले, सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह वीए सूहा सब संसार है, जिन दुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सा बिनस जाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै करे आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत ना पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजै पाए। मुंद एयाणी दुमणी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजै परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ, सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामण को लखणी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मनमुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया, ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख परतार। महला पहला। सूहा रंग सुपने निसी, बिरता गे गलहार। सच्चा रंग मजीठ का, गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी, सब बुरियाइयां शार पौड़ी। एहो जग आपो पायो न, कर चोज विडान। पंच तात विच पाईयान, मोह झूठ गुमान। आवै जाय पवाई है, मन मुख अज्ञान। एक ना आप बुझायोन, गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजाना बख्से ओन, हर नाम निधान।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुखरलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महल।

आई। जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुई ते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहों बेगाना पौका स्तंताई। भगत हीण नानक जे होएगा, ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवां।

जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै धारिया। अवरना सूझै गुर कौ वारिया, नानक नाम रति निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियारा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे। तिनके तैं दुख निवारे, रहाओ तू दयाल दया पदाता। क्या है जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुते होए। ऐसा आख वखाणे, गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए। मनमुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी। सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई। सच्चा आप सवारे, परम पुलाने से मनमुख कहिए। नारोवार ना पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए। गुर का शब्द संभाले, हर जन माया माहि निस्तारे। नानक भाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए। दूजा होए ता सोजी पाए, तिसते दूजा नाही कोए। तिसदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसै मन आए। ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवटी लाए। आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए। आपे जाने को सोए, माया का रूप सब तिस्ते होए। जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तसे आए। सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे, आप आप बुझाए आपे जापे। आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते। क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है। समय एक समाना, सतगुर परचय हर नाम समाना। जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए, अंधन लागै सही ध्यान ना। रहाओ
क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना। जो आप चलाए तवै कोई चाले जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा। एक ना करमै दे वड़ियाई एक परम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा पूरा थट बनाया पूरा वेखो एक समाना। इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै सो सतगुर माए समाना। यह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हरनामा। रहाओ चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना। जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कल मैं कीर्त हरनामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे सिउ प्रीत लाए चूकै मन अभमाना। कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाउ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावै सहे सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आ वसै मन आए। आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेलै मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निकर वासा हर गुण गाए। रंग चलू लै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हाँ मैं माया शब्द जलाई दर सच है गुरते सोभा पाई। जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरा। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार वेखै बहु न मरे न जंपे खै। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान। सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई। जै देखा तरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे भाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया। गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना। ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना। ओ ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती सरनागत पुरखिया जन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथर ही न्या कर्मा। मेरे मन पज राम नाम मैं रामा गुरमत हर रस पाई है। होर त्यागो ने फल कामा। रहाओ
हर जन सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर, हर जपिया वड्डे करमा नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा, ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड़िया करमा, हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़करमा, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा, बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया, बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सके प्रभ, हम क्यों कर मुग्ध तारा, मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरा सतगुर पार परा रहाओ, हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा, तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोह तरा, सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा, ते नर भागहीन दोहचारी ओए जन्म ओए फिर मरा, जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा, बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोथ है कल युग, खेवट गुर सब तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिख थिरखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ, काया नगर मैं राम रासी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो, सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो, हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ, गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो, राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो, बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी, गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी, हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ, अन क्यो पाव चितवी है बहु तेरे सा होवै जे बात हो वैनी, अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी, मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी, आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी, मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानके प्रभ करते स्वामी ज्यो पावै तवै बुलैनी, बिलावल महला चौथा अनद मूल त्यायो पुरखोत्म अन दिन अंद आनंदे, धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे, जप मानो हर हर नाम गोबिंदे वड़पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे रहाओ, साकत मूड़ माया के बद्धक विच माया फिरै फिरंदे, तृष्णा जलत किरत के बांदे ज्यो तेली बल्द पवंदे, गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़पागी सेव करंदे, जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे, आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे, जन नानक आपे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करया सा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिखिया संसार सतगुरु बोए।

अगणत गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जंपीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै, प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम होवत तनसार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा जानड़िए कै कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखण कहो तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिने अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधै नाम वखाणै, हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगै, पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िया प्यारे, संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिय निर्मल, मन होवे परगासो, जन्म मरण दुख कटिये प्यारे, चूके जमकी काने, तना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने, ऊंच या पार

कनेरे, पशु प्रेत मुगत कौतारे, पाहन पारो तारै, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारै। बिलावल महला पंजवां, बिखै वन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे, बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महतना शक्ति ही काई, सादा दासी थियो, नानक से दर सो बावंते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित प्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संगना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते, इन संग सुख नाम पाया। तन तन हर साह जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागणी सखिए, संता संग समाई है, तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै, चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना, निश्चल सरणी पाई है। प्रेम बिछो ना मोह व्यापै, नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतड़े सह सुभाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच पुजाए, नानक अचरज अचरज स्यो मिलिया, कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक रूप सगलो पा सारा, आपे बणजे आप ब्योहारा, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए, जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ, अनक रंग निर्गुण एक रंगा, आपे जल पा आप ही तिरंगा, आप ही मंदिर आपै सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपै जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सदी मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप पावन आप सुधरना, आप करावन दोष ना लेना, आपन बचनो आप

अपने हाथ। और आओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभु नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभु आप, नानक प्रभु शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौनाठा प्रमिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नान कृपा पई प्रपय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख मारे बख्शियां नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए, अब मान खोए खोए खोए खोई हों। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुलिये, भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुर नानक, अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत, एहो मन तुझे चितार। सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सार। तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरनार। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी, ऐसे मने बिसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी, अमृत मनते डारन। काम क्रोध लोभ रत निंदा, सत संतोख बेदारन। इनते काढ़ लेहो मेरे स्वामी, हार परे तुम सारन। नानक की बेनंती प्रप है, साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभु कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजमा चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानकी ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जहां से ओ राच माय तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवार हो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मन अधारो। चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जौ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे सा दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी, रहाओ सुख सहज अर करो आनंद।

कहाओ। गुर को शब्द मेरा ही अरे बस जाए, हर नाम मामा संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पलमा ने, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दिखिया जन सो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन सो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावे त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल तगन मैं जन आप उधारे, कर अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरत श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरै पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नीमया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रवन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महल।

जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमलियाधार, हौ जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कत ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख आनंद पूर्ण साध। नह डोली है इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावै तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावै तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैन न आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोह निर्गुण गुण नहीं नह

कोई वाहे को लुणे को पाए खलहान, नानकेव ना जापई कोई खाए निदान। महला पहला, जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावे सो होए। पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पव मारिया। काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठे उर तारिया। नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया, सलोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया, कूड़े कहन कहन। पंच चोर तिन्ना घर मोहन, हम मैं अंदर सन। सागत मुठे दुरमति, हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया, बिकसो रचै रचन। दुष्टा सेती परहड़ी, जन स्यो वाद करन। नानक सागत नरक मैं, जंबदे दुख सहन। पया किरत कमाम दे, जिव राखै तवै रहन। महला तीजा, जिन्नी सतगुर सेवया, तान निताने तिस। सास ग्रास सदा मन वसै, जम जोहे न सकै तिस। हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस। हर दासा का दास होए, परम पदार्थ तिस। नानक मंतन जिस प्रभ वसै, हौ सतगुर बाणै तिस। जिनको पूर्व लिखिया, रस संत जना स्यो तिस। पौड़ी, जो बोले पूरा सतगुरु, सो परमेसर सुनिया। सोई वर्तिया जगत मैं, कट कट मुख पणिया। बहुत वडियाइया साहेब, नै जाही गणिया। सच सहज आनंद सतगुरु पास, सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म, सच्चे ज्यो बणिया। सलोक महला तीजा, अपना आप ना पछाणई, हर प्रभ जाता दूर। गुर की सेवा विसरी, क्यों मन रह हजूर। मन मुख जन्म गवाया, झूठे लाल चकूर। नानक बख्श मिलाया, न सच्चे शब्द हदूर। महला तीजा, हर प्रभ सच्चा सोहेला, गुरमुख नाम गोविंद। अंध नाम सलाहना, हर जपया मन आनंद। बड़ भागी हर पाया, पूर्ण परमानंद। जन नानक नाम सलाहया, बहुन न मंतन पंग। पौड़ी, कोई निंदक होवे सतगुरु का, फिर शरण गुर आवे। पिछले गुने सतगुर बख्श लए, सतसंगत नाल रलावे। ज्यो मीहे उठे गलियां नालियां, टोबियां का जल। जाए पवे विच सुरसरी, सुरसरी मिलत पवित्र, पावन होए जावे। ए वड्याई सतगुर निर्वैर विच, जित मिले तिसना भुख उतरे, हर सांत तड़ आवे। नानक हो अचरज देखो, मेरे हर सच्चे साहका। जे सतगुरु नो मन्ने, सो सबना पावे। सुध बिलावल बाणी भगता की, कबीर जियो की एको अंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, ऐसो संसार पे।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भक्त नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख विसार सुख अंतरलीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध करतल है सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किश नहीं पव

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश नाम वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितए कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन त्रिपताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय प्रभासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जनदासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे दिन

जो तुद उपकर दुख सुखासा तिसका प्रवासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप, तने अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरतो सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिन के चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावाओ, ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। ते जन की वडियाई हर आ वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुड़ना। जन नानक हर दानिक दीजै, नित बसे हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पात साह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी। तिस जेवड़े अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसे मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंभ कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे। जित हर दरगह पावे तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

आए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए आए न जावै निश्चल धनी बेअंत गुणा ता के तनी लाल नाम जाके परे भंडार सगल घटा देवै आधार सत पुरख जा को है नाउ मिटै कोट अग्नि।

तब पेटे गुरसा दयाल दिन रहन नानक नाम ते आए सू सहजानंद हरनाए। गोंड महला पंजवां गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारा गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार मत को पर

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई, गुरप्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेसर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जा की कोई न मिटे दात, गुर परमेसर एको जान, ज्योतिष पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पू चरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाइय वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम

जन्म जन्म के किलबिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास। गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संग ते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया। सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ जगत पास्ते लेते दान, गोविंद भगत को करे सलाम। लूट लेहे साकत पत खोवे, सा जना पग मल मल धोवे, पंच पूत जने कमाए, उत्पुज खेल कर जगत वे आए, तीन गुणा कै संग रच रसे, इनको छोड़ ऊपर जन बसे, कर कृपा जन लिए छडाए, जिसके से तिन रखे हटाए, कहो नानक भगत प्रभसार, बिन भगती सब होए खुआर। गोंड महला पंजवा, कल कलेश मिटे हर नाए, दुख बिन से सुख कीनो ठाओ, जप जप अमृत नाम अगाए, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपत जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ, गुर के चरण हृदय उतारे, अग्न सागर ते उतरे पारे, जन्म मरण सब मिटी उपाद, प्रभसो लागी सह समाद, थान थनंतरे को स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, कर कृपा जां को मत दे, आठ पहर प्रभ का नाव ले, जा कै अंतर वसै प्रभ आप, ता कै हृदय होए प्रगास, भगत पाए हर कीर्तन करिए, जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गोंड महला पंजवा, गुर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध स्तंते मार, होए रहिए सगल कीरीना, काट काट रमैया सह मैं चीना, इन बिद्रमह गोपाल गोबिंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पैर हर के गुण गाओ, जी प्राण को है सुहाओ, ताजा मान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर से मन रंग, जिन तू किया तिसको जान, आगे दरगे पावे मान, मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल, कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगेर वाला, हो दयाल देहो प्रभदान, नानक जप जीवे प्रभ नाम। गोंड महला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल, अनक बार बंदन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग, गुर सो प्रसन्न पय वड़ भाग, आठ पहर गाइए गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण रमत पय आनंद, पार ब्रह्म पूर्ण बगसंद, कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मिलाए, कर्म धर्म हो तत् ज्ञान, साध संग जपिए हर नाम, सागर तर बोथ प्रभ चरण, अंतर जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंच दूत पागे बिकराल, जुवे जन्म न कबू हार, नानका अंग किया करतार। गोंड महला पंजवा, कर कृपा सुखिया।

तेरी शरण प्रभ दीन दयाल, पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ। प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, घट घट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हलत पलत सवार है, पतत पावन प्रभ बिर तुमार है। औखद कोट सिमर गोविंद, तंत मंत पजी है भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभत आए, मन बांशत पूर्ण फल पाए। करण कारण समरथ दयार, सर्व निदान महाबीचार। नानक बख्श दिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गोंड महला पंजवां, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल हो

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महल

पतन होए। जिस कौ राखै सिरजनहार, चख मारो सगल संसार। प्रभ अपने का पया विश्वास, जियो पिंड सब तिसकी रास। नानक को उपजी प्रतीत, मन मुख हार गुरमुख सद जीत। गोंड महला पंजवा। नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत।

केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौ दिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर मैं किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे, राग गोंड बाणी कबीर जियो की कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मूल में मार्यो, हस्त पाक कैची।

वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पीसर डोलै चीत। रहाओ सोहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोकौ निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तव लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे।

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जा रो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवट्टी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन से नाचे, झूठ ना पतिये पर चै सच, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजार है सोदे, पांच पलीते को प्रबोध, नौ नायक की भक्त पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था, रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या, जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेव कौसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहां करे संसार। मेटी जात हुए दरबार, तुही मुकंद जोग जुगतार। उपजो ज्ञान हुआ प्रगास, कर कृपा लीने कीट दास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो 68 तीर्थ नावे, जे हो द्वादश शिला पूजावे। जे हो कूप तटा देवावे, करै निंद सब वृथा जावे। साध का निंदक कैसे।

सगली सिमरतो श्रवनी सुना, कर नेंदो कमना नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे, भूमदान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना सांडे, कर निंद बोजो नी हांडे। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली।

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागत सह त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्वर भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों करे एक कहे, आशा पितर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवत आयो मरिये, रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने, पत चोली मंगन कह ताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक यार योगी जंगम, पीर पुरुष बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह ऐसे भगत मिले, जन नानक तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला। सुन मा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चितलावे, नानक बोले अमृत बाणी, सुन मा शिंदरा औदू निशानी, आसा महे निराश वलाए, निहचो नानक करते पाए, प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए, दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए, राम कली महला पहला। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए, निहचो दे वड़ियाई, गुर तार तारन हारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया, जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेसर नानक पेटे ओ, साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरत्र लाइए एत, तन कर तुल्हा लंगे जेत, अंतर पाहित सह तू रख, एनस दीवा बल अथक, ऐसा दीवा नीर तराए, जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ। हच्छी

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन, रहन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

सो हर जनो हर प्रभु भावै, अहनस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावै रहाओ। धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुरपूरै सच समाया, गुर आदि पुरख हर पाया, सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, आराम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ, पंच बैल गड्डिया देह तारी, राम कला निभै पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुरका शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बेयोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मैं मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सत युग सच कहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई, सत युग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझे को बीचार, जुग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ। त्रेता एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई, द्वापर दूजै दुबदा होए, परम भुलाने जाने दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए, कल युग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए, माया मोह वत गुबार, सतगुर पेटै नाम उदार, सब युग मैं साचा एको सोई, सब मैं सच दूजा नहीं कोई, साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाणै कोई, सब युग मैं नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम ते आए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड्याई होई, राम कली महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वडभाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक, तिन गुरमत कड काढ लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काढ तली दिखलाया, भागहीन मन मुख नहीं लिया, तृण ओलै लाग छपाया, मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर निकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सतसंगत मिल बुद्ध पाए, राम जन गुरमत राम बोलाए, जो जो सुने कहे सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाओ। जेवड़ भाग होवै मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दाल दुख लह जाए, हर के लोग राम जानी के, पागहीन ना सुखाए,
ज्यों ज्यों राम कहे जने उच्चे नरनिंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नरनिंदक जन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए से हर के चोर। वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए। दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी शरण आए। हम बार्ग तुम पिता परम मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जानी के, तनी ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से ही प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावै। राम मोको हर जन मेल मन पावै, अम्यों अम्यों हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावै रहाओ, हर के लोग राम जानी उत्तम। मिली उत्तम पदवी पावै, हम होवत चेरी दास दासन की। मेरा ठाकर खुशी करावै, सेवक जन सेवै सेवट।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

अगली किस खबर ना पाई, रोवनहार पे ऊठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध। एह तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरना जोग, नै बिन सै अविनाशी होग। जो एहो जाणो सो एहो

चार राग राम कली महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार पुकार ना तू मानै खट पी एका बात वखानै दस अष्टी मिले को कहया तापी जोगी भेद ना लया किंकरी अनूप वाजै जोगी अमतवारो रे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा दुतिया अर्धो अर्ध समाया एक रया ता एक दिखाया एक ऐ सूत परोए मणिए गाठी भिन भिन भिन भिन तणिए फिरती माला बहविद पाए खिंचा सूत आई थाए चाहो मैं एक ऐ मट है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रै रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्तर। इउ जपया नाथ दिन रह नाई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पढ़।

प्रभ मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बहराई, गल मिल चाले एक है पाई, जा को गुर हर दिए सुखा, ता को बहुर न लागे दुखा, आपे आप सर्व प्रतपाल, नानक रतो रंग गोपाल, राम कली महला पंजवा, मुखते पड़ता टीका सहत, हृदय राम नहीं पूर्ण रहत, उपदेश करे कर लोग दृढ़ावे, अपना कहया अपना कमावे, पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ, आगे राख्यो साल गिराम, मन की नो दे दिस विश्राम, तिलक चरावे पाई पाए, लोक पिचारा अंध कमाए, खट करमा आर्य आसन तोती, भागठ गृह पड़े नित पोथी, माला फेरे मंगे बिभूत, एह बिद कोय न तरयो मीत, सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उत्तरी माए, चतर वेद पूर्ण हरन आए, नानक तिसकी सरनी पाए, राम कली महला पंजवा, कोट बिघन नहीं आवे नेर, अनक माया है ता की चेर, अनक पाप ता के पानी हार, जाको माया पही करतार, जिसे सहाई होए भगवान, अनक जतन उवा कै सरंजाम रहाओ, करता राखे कीता कौन, कीरी जी तो सगला पवन, बेअंत महिमा ता की केतक बरन, बल बल जाइए ताके चरण, तिन ही किया जप तप ध्यान, अनक प्रकार किया तिन दान, भगत सोई कल मैं परवान, जाको ठाकर दिया मान, साध संग मिल पय प्रगास, सहज सुख आस निवास, पूरे सतगुर दिया विसास, नानक होए दासन दास, राम कली महला पंजवा, दोसना दी जय काहू लोग, जो कमावन सोई भोग, आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया तंद, ऐसी जान

जा कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रह। हर सिमरत जम कश ना कह रहाओ, बिन हर सगल निरार्थ काम। सोना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा। इहां उहां तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे। किन्ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपै जन कोए। ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार। संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई प्रमाण। नानक दास तां कै कुर्बान। आराम कली महला पंजवा, सिंचै दर्ब देह दुख लोग। तेरा काज ना अवरा जोग, कर अहंकार होए वरतै अंध। जम की जेवड़ी तू आगै बंद, छाड़ विडाणी तात मूड़े। इहां बसना रात मूड़े, माए माया कै माते तैं उठ चलना। राच रहे हो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बार के अंध। पर जोबन लागा दुर्गंध, तृती व्यवस्था सिंचे माए। बिरध भया छोड़ चलियो पछताए, चिरंकाल पाई दुर्लभ देहे। ना बेहूणी होई खे, पशु प्रेत मुगते बुरी। तसे न बूझे जिने सिरी, सुन कर तार गोविंद गोपाल। दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छडावाओ छुटकै बंद। बख्श मिलावाओ नानक जग अंद, राम कली महला पंजवा। कर संजोग बनाई काश, ते संग रहो या नाराज। प्रतपार नित सार सुमार, अंत की बारी उठ सधार। नाम बिना सब झूठ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संग राते। ते सब माया मूठ परानी रहाओ, तीर्थ नाए ना उतर समैल। कर्म धर्म सब हम मैं फैल, लोक पचार गत नहीं होए। ना बिहूने चल सैर होए, बिन हर नाम ना टूट सपटल। सोदे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपै जिसे आप जपाए। सगल फला से सुख समाए, राखन हारे राखो आप। सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ, जित लावै तित लागै स्वामी। नानक साहेब अंतर जामी, राम कली महला पंजवा। जो किछ करै सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना। डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया। दुख गया सबरो गया, प्रभ की आज्ञा मन मैं मानी। महापुरख का संग पया रहाओ, सगल पवित्र सर्व निर्मला। जो वरताए सोई भला, जह राखे सोई मुक्त थान। जो जपाए सोई नाम, अठसठ तीर्थ जै साध पग तरै। तह बैकुंठ जै नाम उचरै।

ताप कपट खुलाने प्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहन न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहिस मातुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दैवसै हर नाम। सगल सुख या नंद या रोग समदर्शी पूर्ण

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गहो कर पक

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप शान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रगास ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंध हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बने।

सदा आनंद न होवी सोग, कबू न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावे हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै ना तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरिए।

कर कृपाल पार ब्रह्म दयाल, मानते कबो न विसर गोपाल, तेरे दास की हो मातूर, नानक की प्रभ सरदा पूर, राम कली महल्ला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोय, तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याय पूरा जिस कर्म, तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगह पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिनसै रचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पहो भागा निरपव मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, तोट न आवै अखुट पंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार, राम कली महला पंजवा, रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता, मेरे राम को पंडार, खात खर्च कष्ट उठ न आवै, अंत नहीं हर पारावार रहाओ, कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन, भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्त

अवतार न जानै अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जानै, सुन सुन अवर वखानै रहाओ। संकरा नहीं जानै भेव, खोज तहारे देव। देविया नहीं जानै मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपना रंग करता केल, आप बिछोरै आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखै आखी। नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप। रामकली महला पंजवा, किशु काजना कियो जान। सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म। किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे। तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूकै प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखै ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणपास। नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल। कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधै जंत। मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जीवन को दाता मेरा प्रभ। पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ। ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार। सुमत सार।

सगल सियान पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों वासा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टकाए अवरे आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान ता दरगह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवै सोई पल मान अपना तजव मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण ही सो आओ आनंद कर संत हर जप शाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतर पार देवन हार दा तार अंतना पारा वार जा कै कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवा दुलभ देह सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुदोए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सुवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवे आस जमकी कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज समीजै राम कली महला पंजवा जिसकी तिसकी करमान अपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोए तिस है आराध।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरै नानक शिक्षा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस को सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत पारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै या मिटाए मलीजै अंदन त्याई नाम।

चक्कर पेलो हर चरण कमलो सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साई तना रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे काम क्रोध मसद ही चूरे करे बेकार जिया रे कह ताई गाफल संगना तसुआ जाई तरत तोह अनक छल जान कौडी कौडी कौ खाक सिर शान जिन दिया तसरा चेतै मूल मिथ्या लोभना उतरै सूल पार ब्रह्म जपहे दयाल इहु मन होवा सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै साज समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पय गोविंद गुण गावतो साध संग दुख जाए रहाओ जां कै राम बसे मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै सो दासा देसा काहे करै जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुरु उपर कुर्बान गुर परमेसर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो पव जल तरै अमृत पीवाओ साध प्यारे मुखी उजर साचै दरबारे अंध करो तज सगल बेकार नानक हर जप उतरो पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बै संतर भागै माटी कौ जल दै जस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश कटमै सिंध की उपरगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमखना बिसरै जी भगतन कै आठ पहर।

आराम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया छिजे वर्त तपन कर मन नहीं पीजे राम नाम सर अवरना पूजे गुर से मना हर जन संग कीजे जम जन दार जोहे नहीं सके सरपन डस ना सके हर का रस पीजे रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजे त्रैगुण बिखिया जन्म मरी जय राम नाम बिन दुख सही जय चार सौ पवन सिंहासन पीजे न्योली कर्म खट कर्म करी जय राम नाम बिन बिरथा सास ली जय अंतर पंच अगन क्यों तीर जती जय अंतर चोर क्यों साध रही जय गुरमुख होए काया गड़ली जय अंतर मैल तीर्थ परमी जय मन नहीं सूचा क्या सोच करी जय किरत पया दोष का कौ दी जय आना खाहे देही दुख दी जय बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थी जय मनमुख जन्म जन्म मरी जय सदगुर पूछ संगत जन की

प्रभु की जय। रामकली महल्ला पहला, अंतर उत्पुजे अवरना कोई, जो कही ऐसो प्रभु ते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहिब सोई, उत्पुत परलो अवरना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया अवमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद के वे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो सुभाओ, तुम ते उपजो भगति पाओ, जप जापाओ गुरमुख हर नाओ। हाँ मैं गर्भ जाए मन पीना, झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं करबार, नानक गुरमुख तत् विचार। रामकली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पाया, तन तन देखत गर्भ गया।

अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गग पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया, एते उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया, हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखे, सागत मानो अभमान पाया, जिसका हो तानो तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया, अंत काल के साथ ना चल, जो दी सह सब तिसह मया। आद पुरख परंपर सो प्रभु, हर नाम हृदय लै पार पया, मुए कौ रोवै एक सह सुनावै, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हर सोख ते बिरगत भया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहि समाए लया। राम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया, सा शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना, अहनिस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रह गगनपुर दृष्ट समय सुर, अनहद शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जिहवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, एह सतगुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लिखण ना जाई। दीपक ते दीपक परगासिया, त्रिपवन ज्योत खाई, सच्चे तखत सच महली बैठे, निरपव ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, कट कट किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला, औहठ हस्त मड़ी कर छाया, तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी, संतो रहाओ। ममता मार हो मैं सोखे, त्रिपवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत अनाहद वाजै, कड़कड़ जो तुम्हारी, परपंच बेण तही मन राखिया, ब्रह्म अगर पर जारी। पंच तत् मिल अहनिस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी, रव सस लौके हो तन किंगरी, वाजै शब्द निरारी। शिव नगरी मैं आसन अवधू, अलख अगम्य अपारी, काया नगरी हो मन राजा, पंच वसै विचारी, शब्द रवै आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी। काल बिकाल कहे कहे बपरे, जीवत मुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त, आपे करता कारी। काया सोध तरै पव सागर, आत्म तत् विचारी, गुरसेवा ते सदा सुख पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, हम मैं तृष्णा मारी। त्रै गुण मेटे चौथे वरतै, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीनै, हृदय एक मुरारी। मनुआ अस्त्र शब्द राता, एहा करनी सारी, वेद बाद ना पाखंड अवधू, गुरमुख शब्द विचारी। गुरमुख जोग कमावै अवधू, जत सत शब्द विचारी, शब्द मराए मन मारे अवधू, जोग जुगत विचारी। माया

मनसा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई बिन नामे होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई गुरमुख आप पिछाणे संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई गुरमुख गावे आप गवावे दर साचै शोभा पाई साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल शब्दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या कट अंतर करता आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक पेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे पंडारी अपनिया भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम बिचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पारे उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोजे से ही पावे होर फूट मोए हंकारी बादी बिन सह सेवक सेवे गुर कै हित प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तने पछाता जिसनो कृपा तुम्हारी सतगुर ना सेवै माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा कीचै जाय मिलिय राम मुरारी
ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਿੱਟੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ, ਉਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਗਤ ਪਾਈ, ਏਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ।

अवर न कर न जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसे सरे वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई।

काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोधत जीवत, संत बिहावै हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड़ नहीं को स्याना, कर कृपा जिस देवै नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ। राम कली महला पंजवा, दावा अग्न रहे हर बूट, मात गर्भ संकट ते छूट, जा का नाम सिमरत पौ जाए, तैसे संत जना राखे हर राए, ऐसे रखन हार दयाल, जत का देखो तुम प्रतपाल रहाओ। जल पीवत ज्यो तिखा मिटंत, तन बिकसै गृह आवत कंत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किरसानी ज्यो राखै रखवाला, मात पिता दया ज्यो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखै कंठ लाए, ज्यो अंदले पेख

राम कली महला पंजवां जी जंत सब पेखिया प्रभ सगल तुम्हारी धारना एहो मन हर कै नाम उदाहरना रहाओ खिन मैं थाप थापे कुदरत सब करते के कारना काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारना नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरण आई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी त्रिपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन यान ना पाई नाम निधान पाया वड़ पागी नानक नरक ना जाई काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुर सच लाए।

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणे इउ कर महल सियापै प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योति उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओहो विधाता मन तन दे ओहो विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार रात दिनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए चेता एक तही सुभोए चित वसै राचे हर नाए मुक्त भया पत स्यो कर जाए छीजै देह खुले एक गंड छे अन देखो जगहंड धूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया छूछी जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजै जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजै पही सिवाल जापै आप प्रभु तेह लोए जुग जुग दाता अवर ना कोए ज्यो पावे त्यों राखे राख जस जाचो देवे पत साख जागत जागरा तुद पावा जा तू मेले ता तुझे समावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिलिया बीसा कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चूर मरे देखे प्रमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आए चले पहे आस निरासा।

ज्ञानो बोलै आपे बुझै, आपे समझै आपे सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पहावै। गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साचा खोट, गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो, नानक गुरमत साच समावो। टूटै ने हो के बोलै सही, टूटै बांधु दिस गही, टूट प्रीत गई बुरबोल, दुरमत पर हर छाडी टोल। टूटै गंठ पड़ै विचार, गुरसबदी करकार जसार, लाहा साच ना आवै तोटा, त्रिपवन ठाकर प्रीत मोटा। ठाको मनुआ रखो ठाए, ठहक मुई अवगन पछताए, ठाकर एक सुबह

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तारन हारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जम की कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईए शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख धरती सच है साजी तिसमें ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नाम क्यों साज समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम

नानक दरगह पावै मान। साच वखर तन पल्लै होए, आप तरह तारे पी सोए। सहज रत्ता बूझै पत होए, तां की कीमत करै ना कोए। जै देखा तै रया समाए, नानक पार परै सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरियै भवजल संसारो। त्रै सत अंगल वाई कहियै, तिस कहो कमने आधारो। बोलै खेलै असर होवै, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरै भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तरसोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नाम मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, इत उत एको जाणै। चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। त्रै सत अंगल वाई अवधू, सुन सच आहारो। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै लख अपारो। त्रै गुण मेटै शब्द वसाए, ता मन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाणै, ता हर नाम लगै प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे लख लखाए। नानक तहु ते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथिया ले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवधू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवै अवधू, हो मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित आसर रही है, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल नंग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जर बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रह, तौ नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अगन निवारी, अप्यो पियो आत्म सुखतारी। सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी। एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना। कहां बसै सो शब्द अवधू, ता को चूकै मन का पवना। नदर करे ता सतगुर मेले, तानी कर वासा एहो मन पाए। आपै आप खाए ता निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए। क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै। गुरमुख हो मैं विचों खोवै, तव नानक सहि समावै। एहो मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोज तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्रिपवन ज्योत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, विरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबहू ना जावै। जा एहो हिरदा देह ना होती, तौ मन कै ठहरैता। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहिता। रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिव लाई। रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जाप साचा। नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा। हिरदा देह ना होती अवधू, तव मन सुन रह बैरागी। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो,
ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਬਸਤਾਉ ਪਵਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤਉ ਅਕਲੀਨ ਰਹਿਤਉ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ ਗੌਨ ਗਗਨ ਜਬ ਤਬੈ ਨਾ ਹੋਤਉ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਰਨ ਭੇਖ ਅਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕੋ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਡਾਣੀ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪੀਜੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਆ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਸ਼ਬਦੈ ਕਾ

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उधर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरसना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास, ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै त्यवहार गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग बारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजिया नो, पाप उन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा।

सच, कथनी बदनी करता फिरै हुक्म न बूझै सच। नानक हर का भाणा मन्ने सो भगत होए, विण मन्ने कच्चन कच। महला तीजा, मनमुख बोल ना जाननी, ओना अंदर काम क्रोध अहंकार। ओए थाओ कथाओ ना जाननी, ओने अंतर लोभ विकार। ओए अपने सवाए आए बह गल्ला करै, ओना मारे जम जंदार। अगै दरगै लेखा मंगे है,

नाम जपे नामो वारादे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाहे किस आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है जिसनो बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसै प्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानके आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कुसत कमाव दे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती एक कूड़ को सत लाया न मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है तिन वात स्पीति। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे स्त्री पुरखे खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए तुर्क मंत्र कन

जोगी गिर ही जटा बिभूत, आगै पाछै रोवै पूत। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सरशाई पाई। नानक काल का एहो प्रवान, आपे आखण आपे जान। महला पहला, हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पड़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई, मुसलमान करे वड्याई। विण गुर पीरै को थाए न पाई, राहो दसाए उथै को जाए। करनी बाजाओ पिस्त न पाए, जोगी कह कर जुगत दसाई। तित कारण कर मुंद्रा पाई, मुंद्रा पाए फिर संसार। जिथै किथै सृजनहार, जेते जीते ते वाटाऊ। चीरी आई ढिल न काऊ, एथे जाणै सो जाय सियाणै। होर फकड़ हिंदू मुसलमान है सबना।

करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। महला पहला, नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल। मनुआ अंधना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत्या चेत है चिंता बद्दा जाए। नदर करे जे अपनी ता आपे ले मिलाए पौड़ी। से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता। गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता। सब किश कर ही माहे है वडभागी लीता। अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता। आपे मेल मिलाया नू आपे दे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। वेल पिंजाया कत मुनाया कट कुट कर खुंब चढ़ाया। लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई तागा सीवै। इयों पतपाटी सिपती सीपै नानक जीवत जीवै। हुए पुराना कपड़ पाटै सुई तागा गंडै। माहो पख केहो चलै नाही कड़ी मोहत किश हंडै। सच पुराना होवै नाही सीता कदे ना पाटै। नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापै। महला पहला, सच की काती सच सब सार। काट तो तिसकी अप्रयापार। सब दे सान रखाई लाए गुण की थे कै विच समाए। तिसदा कुठा होवै सेख लोहू लब निकथा वेख। होए हलाल लगे हक जाए नानक दर्दी दर समाए। महला पहला। कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार। गर्भ ना की जय नानका मत सिर आवै पार। पौड़ी सो सत संगत शब्द मिलै। जो गुरमुख चलै सच ते आयन से सचे। जनहार खर्च तन पलै। भगत सोहन गुण गाव दे गुरमतिया चलै। रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भलै। आपे मिल मिलाईंदा आपे दे वड़ियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा। आसा अंदर सब को कोई निराशा होए। नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए। महला तीजा। ना किश आसा हथ है क्यों निराशा होए। क्या करे ए बपड़ी जा पुलाए सोए। पौड़ी त्रिग जीवन संसार। सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दातार। नि चले हो तन सास सास आराधे निर्मल सोए जानो। अंतर जामी अगम रसना एक पान। रव रहया सरबत नानक बल जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै एवै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। बगला काग न रही सरवर जे होवै अत सियाणा। ओना रिजक न पयो उथै ओना होरो खाणा। सच कमाणे सचो पाई है कूड़े कूड़ा माणा। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पै परवाणा। महला पहला। साहिब मेरा उजला जे को चित करे। नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवे है दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवै मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लाइयन। आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति आईयन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे नाए लाइयन। नानक नाम ती आई है सच्ची वड़िया।

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कट्टे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर के प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वडपात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवां सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवां मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोई ना किसी वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्वतार समरथ हाँ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस पोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवां विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवां तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे ना। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हाँ सद बलिहार।

व्यापया दुर्मत कबुद्ध कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवां कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय राखो रह निराल मताड़ी, कहत कबीर सुनोरे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, भव निद तरन तारण चिंता मन, एक निमख नायो मन लाया। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया, जिसकी भाव भगत ने साधी रहा। पारतान पारतान पारती निंदा, पर अपवाद ना छूटै, आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग ना टूटै। जे कर कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही, दया धर्म यार गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछर पैहारी, कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे।

मां बेदियाले जैसे कनक कला चित मांडियाले रहाओ आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियाले मंदर एक द्वार दस जाके गौ चरावन छियाले पांच कोस पर गौ चरावत चीत सो बछरा राखियाले कहत नाम दे सुनो तलोचन बालक पालन पौडियाले अंतर बाहर काज विरोधी चीज सो बार कराखियाले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो बैरागी राम गावो गो शब्दा तीता नहद राता या कुल कह कर जाओ गो रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देखना जल मैं पैसो जी जंत ना सतावोगो आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए कठी पीतर नाओगो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध

माए ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तउ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय, हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जौ गोदावर जाइए, कुंभ जौ केदार नाइए, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करे, तन जौ हिवाले गारे, राम नाम सर तउ न पूजै। आस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चिन्ह लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा रामचंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटै, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थाने क्या निशानी, तह बाजे शब्दा नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पेओ, पेटै तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहै सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै। बीज मंत्र लै हृदय रहै, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रहै ना यलिया भाखै, पांचो इंद्री बस कर रखै। गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म ना जुवै हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ठ करै। चौमुख दीवा जो द्वार, पलु अंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामै गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम मैं, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याई है हर हर मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेण ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहूं, हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किलबिख काट, हर हर उर तारियो गुरपूरै, मेरा सीस की जय गुरवाट रहाओ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपूरै, गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावै। बहु कंचन दीजै कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मुचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरा चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोह देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुखियो विश्राम सगल निध हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हम बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सूख मोह स्थूल आल जाल।

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू देहे

स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाए, जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा, जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन ना पाए। हरे नार इन बिद पार पराए, त्याय हर जी होए मृतक, त्याग दूजा पाओ रहाओ दूजा। मारू महला पंजवा, बाहर टूंडन ते छूट परे, गुर कर ही माए दिखाया था। अनपव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ना कथू जाया था। मानक पायो रे पायो, हर पूरा पाया था। मोलिया मोल ना पाया जाई, कर कृपा गुरु देवाया था। रहाओ अधिष्ठा गोचर पार ब्रह्म, मेरे साधु कथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वजयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मंत्रशना बूझी, अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुरसेवे, अगड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा, जिसे साज निवाजिया तिसे स्यों रुचना है। आन रुति आन बोई है, फल ना फूलैता है। हरे मन वत्र बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ, पलो समो सुवाओ। रहाओ खोए खेड़ा परम मन का, सतगुर सरनी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया, सोई कार कमाए। पाओ लागा गोबिंद स्यों, काल पाई थाए। खेत मेरा जमया, निखुट न कबहू जाए। पाया अमोल पदार्थो, छोड़ न कतहू जाए। कहो नानक सुख पाया, तृप्त रहे आ गाए। मारू महला पंजवा।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान हे आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम हे भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुरबान हे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन काहू गत पाई रहाओ पंचाली कौ राजसभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो।

माया के मत जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लागो रहाओ। जम को डंड परयो सिरी उपर, तब सो बत्ते जागयो, कहां होते अब कै पछताए, छूटत नाहन पागयो। एह चिंता उपजी घट मैं जब, गुर चरणन अनुरागयो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस मैं पागयो। मारू अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वेद पुराण कथे सुने हारे मुनिया ने का, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहब निर्मलो मन माने एका। तू अजरावर अमर तू सब चलन हारी, नाम रसायन पाए लै पर हर दुख पारी रहाओ। हर पढ़िया हर बुझिया गुरमति नाम उदारा, गुरपूरे पूरी मत है पूरे शब्द बिचारा। अड़सठ तीर्थ नाम हर, अड़सठ तीर्थ हर नाम है किलविख काटन हारा। जल बिलोवै जल मत है तत लोड़ै अंध अज्ञाना, गुरमति दद मथी है अमृत पाईऐ नाम निधाना। मनमुख तत ना जाननी पशु महे समाना, हाँ मैं मेरा मरी मर मर जमै वारो वार, गुर कै शब्दे जे मरै फिर मरै न दूजी वार। गुरमति जग जीवन मन वसै सब को लियो धारण हार, सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा। लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा, दूजे पाए कार कमावनी नितोटा संसारा। साची संगत थान सच सच्चे कर बारा, सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम आधारा। सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा। रस भोगण पात साहिया दुख सुख संघारा, मोटा नाव तराई है गले उगण पारा। मानस दात ना हो वही तू दाता सारा, अगमा गोचर तू तनी अवगत अपारा। गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते भंडारा, नानक मेल न चुकई साचे वापारा। मारू महला पहला बिख बोहे था लादे दिया समुंद मझार, कंधी देस ना आवई ना उर वार ना पार। वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल, बाबा जग फाथा महाजाल। गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाओ। सतगुरु है बोहे था शब्द लंगावन हार, तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार। तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारन हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सुलिव लाए। आवा गौण निवारिया ज्योति ज्योत मिलाए। गुरमति सहज उपजै सच्चे रह समाए, सप पिड़ाई पाईऐ बिख अंतर मन रोस, पूर्व लिखिया पाईऐ किसनो दीजै दोस। गुरमुख गारड़ जे सुने मने नाओ संतोष, मागर मछ फहाई है कुंडी जल वताए। द्रुमत फाथा फाही है फिर पछोताए। जमन मरण ना सुजई कीर्तना मेटिया जाए, हाँ मैं बिख पाए जग तो पाया शब्द वसै बिख जाए। जरा जोहे ना सकई सच रह लिवलाए, जीवन मुक्त सो आखी है जिस विचो हमें जाए। तंदे तावत जग बंधिया ना बुझै विचार, जमन मरण विसारिया मनमुख मुक्त गवार। गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम कै बोलै बोलन हार। सच चुगै अमृत पीऐ उडै ता एका वार, गुर मिलिया खसम पछाणियै कहो नानक मोख द्वार। मारू महला पहला शब्द मरै ता मार मार, भागो किस पै जाओ। जिस कै डर पै भागियै अमृत ता को नाओ, मारै राखै एक तू बीजो नाही थाओ। बाबा मैं कुचील काचो मतहीन, नाम बिना को कश नहीं गुरपूरै पूरी मत कीन रहाओ। अवगण सुबर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुखी उपजै बिन पागा तन नाहे, जिनके नाम ना मन वसै से बांधे दुख सहाहे। जिनी नाम विसारिया से किते आए संसार, आगे पाछे सुख नहीं गाडे ला देशार। विछड़िया मेला नहीं दुखकनो जम द्वार,
ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੂਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾਏ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜੋ ਦੱਸੇ ਤਿਸਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਗੁਰਬਿੰਦ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਜਨ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਿਲਾ ਸਾਜ ਪਠਾਇਓ ਲੇਖ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਦੇਖ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸੈ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਵਸੇਖ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਕਿਆਸ ਮੰਗੋ ਦੇ ਬੀਜੋ ਸੂਜੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰਨ ਦੇ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵਡਾਈ ਦੇ ਨਗਰੀ ਨਾਇਕ ਨਵਤਨੋ ਬਾਲ ਕਲੀਲ ਅਨੂਪ ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚੋ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਜੋਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਥੀਐ ਤੂੰ ਦੀਪਕ ਤੂੰ ਧੂਪ ਗੀਤ ਸਾਧ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਦ ਸਾਧ ਤਨ ਰੋਗ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚੋ ਚਵੈ ਛੂਟੈ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਬਾਦ ਇਹੋ ਮਨ ਸੱਚੈ ਮੋਹਿਆ ਜਿਹਵਾ ਸੱਚ ਸਾਧ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲੈ ਬਿਖਲਾਦ ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੋ ਸੁਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉਂ ਫਰਮਾਵੈ ਤਿਉਂ ਚੱਲਾਂ ਸੱਚ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਅੰਦਨ ਲਾਲੇ ਚਾਕਰੀ ਗੋਲੇ ਸਿਰ ਮੀਰਾ ਗੁਰਬਚਨੀ ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਧੀਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਾਹਿਬ

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने। घट घट राम हयाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बूझै। ओ बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तो छूटै नाही। जो सिंचै तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै तित तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त्या दोत पया उठ चले, ज्यों ज्यों औध विहानियां। पाप करेंदण सर पर मुठे, अजरा ईल फड़े फड़ कुठे। दोजग पाए सृजनहार, लेखा मंगे बाणियां। संग न कोई भैया बेबा, माल जोबन धन छोड़ वंजेसा। करण करीम ना जा तो करता, तिल पीड़े जो कहानियां। खुश खुश लैंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लभ पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना सकै साचे सो लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रफुरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पए देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ माहे समाना, नानक नीच

गुर की सेवा मुक्त परायण अंधन कीर्तन कीना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो। साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा कीना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिभवन सेवक वडो वडेरे। सब तेरी कुदरत तू सिर सिर दाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, ओए दरगै पैंदे सतगुरु छड़ाए। हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत न काई। हाँ मैं

लालच छोड़ चो अपरंपर इउं पावो मुग द्वारा है। जिस बिसरिया जमजोहण लागै सब सब सुख जाहे दुखा फुनिया गै। राम नाम जप गुरमुख जियड़े एहो परम तत् विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा गुरमुख हर रस अंतर डीठा। अहनस राम रहो रंग राते एहो जप तप संयम सारा है। राम नाम गुर बचनी बोलो संत सभा में एहो रस टोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना बहुना गर्व मजारा है। सच तीर्थ नावो हर गुण गावो तत् विचारो हर लिव लावो। अंत काल जम जोहे ना साकै हर बोलो राम प्यारा है। सतगुर पुरख दाता वरदाना जिस अंतर साच सो शब्द समाणा। जिसको सतगुर वेर मिलाए ते चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी तिस मैं राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है आत्म हर पाइया शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन भाई खिमा गहो सतगुर सरनाई। आत्म चीन प्रात्म चीनो गुरसंग त्यो निस्तारा है। साकत कूड़ कपट मैं टेका अहनस निंदा करै अनेका। बिन सिमरन आवै फुन जावै गर्भ जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कब हूं मुकै। बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरियो पारिया फारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया। बिन गुर पार ना पावै कोई हर जपिए पार उतारा है। गुर की दात ना मिटै कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख ने नयावै मन सो प्रभ अपरया पारा है। गुरते पूले आवो जावो जन्म मरो फन पाप कमावो। सागत मूड़ा चेतना चेतै दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पुरब जन्म के किए सो जाने जिनदा तै दिए। किसको दोष देह तू प्राणी सो अपना किया करारा है।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल सब सच्चा ओ महा हे। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाण, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मै।

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरै सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित सरीरा। बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझै, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है। पूरै सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साच सलाहे साच समावै, जिन गुरमुख एको जाता है। जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए। नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है। मारू सोल हे तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा। जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यों मन राता है। आपे हीरा रतन, आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो। जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरे न जम्मै चूकै फेरी। साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है। माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया। जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुन वरतै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा। गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा। पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोहे हर स्यों चेतना लागे, दूजे पाए घणा दुखिया गै। मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एक

आपे करे कर आए करता, शब्द मरे सोई जन मुक्ता, नानक नाम वसै मन अंतर, नामो नाम ते आएंदा। मारू महला तीजा, जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया, पाणा मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा। गुरमुख तेरा पाणा पावे, सहजे ही सुख सच समावे,

जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे, गुर कै शब्द परम पौ भागे, विचे ग्रह सदा रह उदासी जो कमल रह विच पानी है, विच होमै सेवा थाए ना पाए, जन्म रह फिर आवे जाए, सो तप पूरा साई सेवा जो हर मेरे मन पानी है, हाँ क्या गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्वजियां का अंतर्यामी।

जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटाय हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनाओ बिमल जा स्वामी, एकाए ओट तजो बिख कामी। निम निम पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटाय कमाते अवगुण मेरे। सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिया, संत संग मिल सागर तरिया। अर्चा बंदन हर संत निवासी, बाहुड़ जोन न नंगना। दास दासन को कर लिहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला। सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प धरी हर आगै, जन्म जन्म का सोया जागै। जिसका सा सोई प्रतपालक, हाथ त्यागी हूं मैं हंतना। जल थल पूर्ण अंतर जामी, घड़कट रव्या छल स्वामी। परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जत कत पेखाओ प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर। अगै अगा किशमित नहीं पाई है, सो बूझै जिस कर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी डंजा। कर गै काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो तार दृष्टंगना। एको एक रव्या सब ठाई, तिसबिन दूजा कोई नाही। आद मद अंत प्रभ रव्या, तृष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब के स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत तना। जाचक जाचे तुम्हें अराद, पतत पावन पूर्ण प्रभ साद। एको दान सर्व सो गुणनिद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करण हारा, लगी लाग संत संगारा। निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम जीठ रंगना। सोले कला संपूर्ण फलिया, अंत कला हुए ठाकर चढ़िया। आनंद विनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना। मारू सोलहे महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। तू साहिब हां सेव कीता, जियो पिण सब तेरा दीता। करन करावन सब तू है, तू है नाही किछ साड़ा। तुम्हें पठाए ता जग मैं आए, जो तुद पाणा से कर्म कमाए। तुझ ते बाहर किशु ना होवा, ता पी नाही किश काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहा हर जस तेरा पढ़िए। आपे लेखा लेखे आपे, तुम स्यो नाही किश चाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खिलावे त्यों खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही को वे पाड़ा। एक बैसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देह दसंतर। एक ही कौ कास, एक ही कौ राजा, इन मैं कहिए क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति, कमन सो नरका, कमन सहसारी, कमन सो भगता। कमन सो दाना, कमन सो होछा, कमन सो सुरता, कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता। हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा। सागर की ना आत्म पारा, एक खड़े रसा तलकार। मनमुख गावारा।

अंदर मुस्क चुकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस युग में नाम निधान है नामो नाल चले, एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ले। हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल्ले, से सह सचेवन जा रहा जिन हर तन पल्ले, हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल्ले। श्लोक महला तीजा, मनमुख वापार सार ना जाननी, बिख विहाजै बिख संगरै बिख स्यों तरै प्यार। बारों पंडित

मैं बोलत ही बड़लाज। राम जे पाया राम ते पवन बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आयासा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुन्द्र है पार, उदक समुन्द सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे। सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ। जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे। जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिख सोई। जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक हो रहो सगल मैं अब कैसे परमावो। राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ। तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन। जब जब आए केस ते पकड़ तै हर को नाम छावन रहाओ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रवनु रसपत इंद्री कया नमाना। बाबा अब ना बसो ए गाओ, करी करी का लेखा मांगे काहित चेतु नाओ रहाओ। धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पाग गए ले बांधे ओ जियो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा। राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अनपव होए वना हम्बे। सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े, हुक्मे बूझे ता निरपव होए वना हम्बे। हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े, पाखंड रता सब लोक वना हम्बे। त्रिसना पासना छोड़ई बैरागी अड़े, ममता जालिया पिंड वना हम्बे। चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े, जे मन मृतक होए वना हम्बे। सतगुर बिन बैराग ना हो वई बैरागी अड़े, जे लोचे सब कोए वना हम्बे। कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े, सहजे पावे सोए वना हम्बे। कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े, मोको पौजल पार उतार वना हम्बे। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावे रहाओ। हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। खीर समानो साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंत बिनोदी जातना काहू की मानी। सलोक कबीर गगंत मामा बाजेओ परयो निशा न काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड खेत। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੁ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਸ਼ਤਰ ਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਬਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਇਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ਅੰਬਰੀਕ ਕਉ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ਨਾਉ ਨਿਧ ਠਾਕਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਤਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂ ਬਲ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜਿਉਂ ਸੋਇਓ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਤੰਦੈ ਝੂਠ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਹ ਸਜਵੈ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਨੈ ਔਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੁਜਗ ਜਾਤ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤਰੀ ਬਾਜੀ ਗਰਬੇ ਕਾਮ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉੱਤਰ ਸਪਾਰ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦੱਤ ਕੀਆ ਅਬਲ ਬਲ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲ ਥਪਿਆ ਅਘੜ ਘੜਿਆ ਤਹਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਆ ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨਿਆ ਰਹਾਓ ਅਰਧ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਦ ਕਉ ਸਰਦਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਬਦਤ ਜੈ ਦੇਉ ਜੈ ਦੇਵ ਕਉ ਰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵਲੀਣ ਪਾਇਆ ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਜੀਆਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਹੇਗਾ ਰਹਾਓ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਪੁਲਾਹੇਗਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ

महल बुलाईड़िए बिलम ना कीजै, आंदन रतीड़िए सहज मिली जै, सुख सहज मिली जै रोसना कीजै, गर्भ निवार समाणी साचा राती मिले मिलाई मन मुख आवन जानी। जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी, नानक आपै आप पछाणै गुरमुख तत् बिचारी, तुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर लख लखाया और ना दूजा पाले, गुर अलख लखाया जा तिस पाया, जा प्रभ कृपा धारी, जग जीवन दाता पुरख विदाता सहज मिले बनवारी। नदर करै तू तारै तरिया सच देवो दीन दयाला, प्रणत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला, भरपुर धार रहे अत प्यारे सब दे रव रहया गुरु मुरारे, गुरु रूप मुरारे त्रिपवन तारे ताका अंत ना पाया, रंगी जिनसी जंतो पाए नित देवै चढ़ै सवाया, अपरंपर आपे थापो थापे तिस भावै सो होवै। नानक हीरा हीरे बेदया गुण कै हर परोवै, गुण गुणै समाणे मस्तक नाम निशानो, सच साच समाया चुका आवन जानो, सच साच पछाता साचै राता साच मिलै मन पावै, साचे उपर अवरना दिसै साचे साच समावै। मोहन मोह लिया मन मेरा बंधन खोल निरारे, नानक ज्योति जो समाणी जा मिलिया अत प्यारे, सच कर खोज लहे साचा गुरथानो, मनमुख न पाईऐ गुरमुख ज्ञानो, देवै सच दानो सो परवानो, सदाता वरदाना अमर अजोनी अस्थर जापै साचा महल चिराणा, दोत उचा पत लेखना लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी, नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरिया तारी। तुखारी महला पहला ए मन मेरिया, तू समझ अचेत आने आराम, ए मन मेरिया छड़ अवगण गुणी समाने आराम, बहुसाध लुभाने किरत कमाने विछड़िया नहीं मेला, क्यों दुत्तर तरिये जम डर मरिये जम का पंथ दुहेला। मन राम नहीं जाता साज प्रभाता, अवकट रुदा क्या करे, बंधन बांधिया इन बद छूटे गुरमुख सेवै नर हरे। ए मन मेरिया तू छोड़ आल जंजाला राम, ए मन मेरिया हर सेव पुरख निराला राम, हर सिमर एक अंकार साचा सब जगत जिन उपाया, पौन पानी यगन बांधे गुर खेल जग दिखाया। आचार तू विचार आपे हर नाम संजम, जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम, नाम हर का जप जपो। ए मन मेरिया तू थिर रहो चोट ना खावही राम, ए मन मेरिया गुण गावै सही समावही राम, गुण गाए राम रसाए रसीऐ गुर ज्ञान अंजन सारे, त्रै लोक दीपक शब्द चानण पैंदू संघारहे, पै काट नरपौ तरह दुत्तर गुर मिलै कार्य सारे, रूप रंग प्यार हर स्यों हर आप कृपा तारे। ए मन मेरिया तू क्या लै आया क्या लै जाए सी राम, ए मन मेरे आता छुटसी जा भरम चुकाए सी राम, तन संच हर हर नाम वखर गुर शब्द भाव पछाण है, मैल पर हर शब्द निर्मल महल कर सच जान है, पत नाम पावै कर सुधावै चोल अमृत पी रसो, हर नाम त्याई शब्द रस पाईऐ वड भाग जपिए हर जसो। ए मन मेरे बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़ै राम, ए मन मेरे बिन बेड़ी पार न अंबड़ै राम, पार साजनिया पार प्रीतम गुर शब्द सुरत लंघावे, मेरे साथ संगत करै रलियां फिर ना पछोतावे, कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो, नानक प्यम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो। तुखारी संत

मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रबलहो रे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमहो रे। अंतर काय अवमान जोर तू किश किश किश जानता, एहो दूर करो अपन गहोरे। जन नानक कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवा कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रेरंग देखै, जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बेडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी। केदारा महला पंजवा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिना सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी, एक मन अनाथ नाथ राघो कृपाल रहाओ। अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो। उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल। शरण बंदन करना पते, भव हरण हर हर हर हरे। एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो। उदरे परम मोह सागर लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवा कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन भीतर। मांगन कौ हरदान रहाओ, सुखदाई पूर्ण परमेश्वर। कर कृपा रखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोबिंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक कहो हर कै रंग रंग। चरण कमल संग ध्यान, केदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो। तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरख प्यारे। जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कमन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रतपालय सगल समालय। सगलियां तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विदाते। घट घट तुझे दिखाओ। केदारा महला पंजवा, प्रे की प्रीत प्यारी। मगर मन मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी। खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी। मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो। करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ। काड लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो। भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा, अहं बुद्ध तजावो। अपनी भगत देह दया लावड, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवा, हर बिन जन्म अकार्थ जात। तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ। धन जोबन संपै सुख भुगवै, संग ना निभत मात। मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात। कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जी होए सहात। केदारा महला पंजवा,
ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਲਸ ਸਾਥ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰਨਾ ਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਕੇ ਨਾਥ ਰਹਾਉ। ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਭੁਗਵਤ, ਨਹਿ ਨਿਬਹਤ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਖਾਤ, ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਾਥ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਸ਼ਤ, ਮਿਲੈ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਮਾਥ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂਪ੍ਰਬਲ ਭਈ, ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ਰਹਾਉ। ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ, ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਰਸਨਾ, ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ, ਬਿਦ ਤੀਖਨ ਸਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ, ਗਾਠ ਬਾਂਧ ਧਰੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮੈਂ ਖੋਰ, ਭਰਮ ਭੀਤ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕਰ, ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਆਪਣੀ ਓਰ ਰਹਾਓ। ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਚਾਰੋ ਤੋਰ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਇਥ, ਉਧਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ। ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਧਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਿਖੈ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਹਰ ਸਕਤ ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ, ਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹੋਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਭੈ ਕਲਮਲਹਾਨ ਰਹਾਉ। ਤਿਆਗ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ, ਕਾਲ ਸਿਰ ਪਰਜਾਨ, ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ, ਝੂਠ ਸਰ ਪਰਮਾਨ, ਸਤ ਪੁਰਖਿਆ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਹਿਰਦੈ ਤਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਨਾਨ ਧਾਨ ਲਾਭ ਨਾਨਕ, ਬਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਛ ਵਿਆਪੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਉ। ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਆਪ ਰਾਖਿਓ, ਨੈ ਉਪਜਤੋ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਮਰੈ, ਤਿਸ ਦਹਿਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਜਸ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਸ਼ਾਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੋਤ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਜੀਵੈ, ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ਰਹਾਉ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨੂ, ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਹਕ ਖੋਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਹਾਸ੍ਰਮ ਪਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ, ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਆਨ ਲਾਗੇ, ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ, ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਰੱਖੋ ਕੰਠ ਪਰੋਤ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤੈ ਧੂਰ ਲੇ ਮੁਖ ਮਲੀ, ਗੁਣਾ ਅਚਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ, ਨੈ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਕਲੀ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਬਚਨ ਕਾਰਜ ਸਰਵ ਪੂਰਨ, ਈਤ ਊਤ ਨਾ ਹਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਕ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ, ਬਿਖੈ ਅਗੰਨਾ ਜਲੀ, ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸ ਅਪਨੋ, ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਚੱਲੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ, ਕੋਟ ਸਾਂਤ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ, ਜਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਝੈ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਤਤ ਉਧਰੈ ਮੁਚੈ, ਰੇਣ ਜਨਕੀ ਲੱਗੀ ਮਸਤਕ, ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਪੀਤਰ, ਕੜਕਟੈ ਸਵਾਮੀ ਸੁਜੈ, ਸਰਨ ਦੇਵਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਬਹੁਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੁਜੈ। ਕੇਦਾਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਰਬਤਰ, ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਡਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੈ ਕਹਲਿਆ, ਹਰ ਗੁਣਿਤ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ,
हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही मीन बिछोहा नास है जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चात्रक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज करण प्रगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुभागा अंधन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्योंदे हुरी कत सोभा पावै दर्श बिहुना साध जानो खिण टिकण न आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हरसक बैरागी नाम लिव लागी कतो ना जाय नखेदया हर स्यो जाय मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवै हो कृपाल नानके स्वामी हर चरण संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख बिचारे नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वछल सुन अंचलो गहया घट घट पुर समानिया सुख सागरो पाया सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे राग के दारा बाणी कबीर जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना तेरा जानो एक याद कोई काम क्रोध लोमो बिबरजत हर पद चीने सोई रहाओ राजगुण तम गुण सत गुण कही है एह तेरी सम माया चौथे पद कहो जो नर चीने तिन ही परम पद पाया तीर्थ बरत नेम सो संजम सदा रह निकामा तृष्णा अरमाया परम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदिर दीपक प्रगासिया अंधकार तह नासा निरपव पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी आपै दहद से आप चलावै निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी कहत कबीर सुनो रे संत हो निभि खेप हमारी री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो बोलो पहिया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझै हर रस पावै पाई जेते कट अमृत सब ही मैं पावै सह पियाई नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै तमन खीवा पाई अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी उबड़ चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी काम क्रोध

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पैरव महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पूजा मनहार रहाओ सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरों महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंदक को अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितविय तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करे तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पे सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पैरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़ै नेड़ै सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला को लहै, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर भिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟੋ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਫਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ।

कर्तार जैसे ऊपर नजर करे करतार तेह जन के सब का सवार तिसका रखा एक को सोए जन नानक पढ़ ना सके कोए पैरो महला पंजवा।

हर के नाम बिना सब झूठ, बिन गुर पूरे मुक्त ना पाई है, साची दरगह सकत मूठ रहाओ। सोई कुचील कुदरत नहीं जाने, लीपिया थाए ना सुच हर माने, अंतर मैला बाहर नितोवे, साची दरगह अपनी पत खोवे। माया कारण करे उपाओ, कब न कहले सीधा पाओ, जिन किया तिस चीत ना आने, कूड़ी कूड़ी मुखो बखाने। जिसनों कर्म करे करतार, साथ संग होए तिस व्यवहार, हर नाम भगत स्यों लागा रंग, कहो नानक तिस जन नहीं भंग। पैरो महला पंजवां, निंदक कहो फिटके संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को रखनहार। निंदक मुआ निंदक के नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सर कड़क्यो काल रहाओ। निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने, हाथ पिछोरे सिर तरन लगाहे। निंदक कहो दई छोड़े ना है, हर का दास किश बुरा ना मांगे, निंदक कहो लागे तुख संग। बगले ज्यों रहा पंख पसार, मुखते बोलिया ता कढ़िया बीचार। अंतरजामी करता सोए, हर जन करे सो निचल होए। हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत बीचार। पैरो महला पंजवां, दोए कर जोर करो अरदास, जियो पिंड तन तिसकी रास। सोई मेरा स्वामी करने हार, कोट बार जाई बलिहार। साधु तूर

कर कृपाली जलन लाए, चरण कमल नानक नित्य आए, भैरव महला पंजवा। सतगुर अपने सुनी अरदास, कार्य आया सगला रास, मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुर पूरे डर सगल चुकाया। सब ते वड समर्थ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ। जा का किया सब किछ होए, तिसका अमर न मेटे कोए। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूर्त गुर तिसका रूप। जा कै अंतर बसै हर नाम, जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान। बीस बिसोए जा कै मन प्रगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास। तिस गुर कौ सद करी नमस्कार, तिस गुर कौ सद जाओ बलिहार। सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। राग भैरव महला पंजवा, पड़ताल कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परत पाल प्रभ कृपाल, कवन गुण गनी, अनक रंग बहुत रंग, सर्ब को तनी रहाओ। अनक ज्ञान अनक ध्यान, अनक जाप जाप ताप, अनक गुणत तुंत ललत, अनक धार मुनि, अनक नाद अनक बाज, निमख निमख अनक स्वाद, अनक दोख अनक रोग, मिटै जस सुनी। नानक सेव्या पार देव, तटै खटै बरत पूजा। गवन पवन जात्र करन सगल फल पुनी, भैरव अष्टपदिया महला पहला, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मैं राम राम मैं आत्म, चिन्स गुर बिचारा, अमृत बाणी शब्द पछाणी, दो काट हो मारा। नानक हो मैं रोग बुरे, जै देखा तै एका बेदनु, आपे बख्शा सब तुरे रहाओ। आपे परखे परखण हारे, बहुर सूलाक न होई, जिन कौ नदर पई गुर मेले, प्रभाणा सच सोई। पौन पानी बैसंतर रोगी, रोगी धरत सपोगी, मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। रोगी ब्रह्मा बिशन सुरुद्रा, रोगी सगल संसारा, हर पद चीन भय से मुक्ते, गुर का शब्द विचारा। रोगी सात समुद सन दिया, खंड पताल से रोग परे, हर के लोक से साज सोहेले, सर्बी थाई नदर करे। रोगी खट दर्शन पेख तारी, नाना हठी अनेका, बेद कतेब करे कै बपरे, न बुझे एक एका। मिठ रस खाए सरोग परिजय, कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताही। तीर्थ परमै रोग न छूटस, पढ़िया बाद विवाद भया, दुबदा रोग सो अधिक वडेरा, माया का मोहताज भया। गुरमुख साचा शब्द सलाह, मन साचा तिस रोग गया, नानक हर जन अंदर निर्मल, जिनको कर्म निशान पया। भैरो महला तीजा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिन करतै कि चल तो पाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख भूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया। गुर कया शब्द ते मेरे अंतर ध्यान, कहो ना छोड़ो हर का नाम रहाओ। पिता प्रहलाद पंड पठाया, लै पाटी पंदे कह आया। नाम बिना ने पढ़ो आचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मुरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, पर व्यर्थ ना पढ़ो रही समझाए। निरपव दाता हर जियो मेरे नाल, जे हर छोड़ो तो कुल लागे गाल। प्रहलाद सब चाटड़े विगारे, हमारा कहया ना सुना अपने कार्य सवारे। सब नगरी मैं भगत रड़ाई, दुष्ट सभा का किश ना मसाई। संडै मरकै की पुकार, सबे दैत रहे चख मार। भगत जना की पत राखै सोई, कीते कीते कह कया क्या होई। किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तनिया भुलाया। पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया, अंधा

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदबोलंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पतंग।

डकाई रहाओ पंखी मृग माया मै राते साकर माखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु का स्वर आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राये जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम्बरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ ते तीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा पिखारी देव जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहा ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़ बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख ले लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पैरव कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जा मैं जोत करे प्रगास बिजली चमके हुए आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हमै गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगमै गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दल अभ अंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवरना पाइये गुर की साम। टारी न टर आवे न जाए, सुन सज मेरे उसमाए। मन मध्ये जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र मन असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। रहाओ कोट चंद्र में करे चराक, सुरत पीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिर, बास कोट सेज बिस्थर। समुद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहर, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस नाम हरी। प्रणवै नाम दे होए हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर धन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देव ना कह बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मेरो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतार है। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरै पाछै बैठा जाए। ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो कर दूजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत्या नाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़ कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सह सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहो ना तूटस रया समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसे ती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो काल है तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखै जाए, मार्ग छोड़िया मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करै सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एहो बिचार, इन बित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावै, चटिया सबै बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी। पूत प्रहलाद कया नहीं मानै, तिन तौ औरै ठानी।
दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औद कनेरी गिरताल जल ज्वाला पै राखे ओ राजा राम माया फेरी काढ़ खड़ग काल पै कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रिपवन तनी थंब माहे हर पाख हर नाकसो जिन नखे बिदारियो सुर नर किए सनाथा कह नाम देव हम नर हर त्यावे राम अप है पददाता सुल्तान पूछे सुन बे नामा देखो राम तुम्हारे कमा नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला रहाओ बिस्मिल गऊ देहो जी आए नातर गर्दन मारो उठाए बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवे कोए मेरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए बादशाह हो चढ़ो अहंकार गज हस्ती दिनो चमकार रुदन करे ना मैं की माए छोड़ राम की ना पजा खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट ना माए उबरे हर की ओट काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान बादशाह बेनती सुने हो नामे सर पर सोना ले हो माल ले हो तो दोजक परो तीन छोड़ दुनिया को परो पावो बेड़ी हाथो तालो नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात कड़ी जा बीती सुनी अजो ना आयो त्रिपवन तनी पाखंतन बाज बजायला गर चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कहे ता तरन एक ओडी करो कहे ता लेकर ऊपर तरो कहे ता मुई गऊ देव जी आए सब कोई देखे पति आए नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल दूधै दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की कट लगी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए नामा कहे सुनो बादशाह एहो किश पतिया मुझे दिखाए इस पतिया कह परवान साच सील चलो सुल्तान नाम देओ सब रया समाए मिल हिंदू सब नामे पै जाए जाओ अब की बार ना जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत जनाले उधरिया पार सगल कलेस निंदक पया खेद नामे नारायण नाही भेद कर दूजा जाओ गुरदेव ता मिले मुरार जाओ गुरदेव ता उतरै पार जाओ गुरदेव ता बैकुंठ तरै जाओ गुरदेव ता जीवत मरै सत सत सत सत सत गुरदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाओ जो गुरदेव ता नाम दृढ़ावै जो गुरदेव ना दे दस्तावै।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोहे देहो दान, जप जीवै नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जपत कछ नहीं संताप, गोबिंद जपत समिट अंधेर, हर सिमरत कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोबिंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करण हार, ई तूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस। जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया, अहिट सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपुनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमण जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी, मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उदारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने करथाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने कहो नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाओ।
ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਉਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

तुझे पछाण है, तेरिया भगता कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे, जिसनों तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पाणा, कहो नानक टह पया द्वारा, रख ले वो मुगद्या जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल ना बुझे अपना सूजे, भ्रम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभते होवे ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी, आवरियो पाओ ना को सूजे, नानक तरिये गुरबचनी, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पितर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग तिहार है कछु ना चल है, ताहे कहां लपटानो, उस्त निंदा दो पर हर, हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण, एक पुरख भगवानो, बसंत महला।

जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे अर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए। बसंत महला नावा माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया। तृष्णा सकल बिनासी मन ते नै सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै। कहो नानके बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम। तन बिनसै जम स्यों परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत गृह कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग। कछ बिगड़ियो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत। बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत। नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों टूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रताओ चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए। जो किशकीनस प्रभर जाए पै मान निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्या सनिवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे। गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए। अत लुब्ध लुबानो बिख माए। नय असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए।

सब हुक्मो वरतै हुक्म समाए, दुख सुख सब ते सिर जाए। तू अभुल ना भूलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए माता गाहे। तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मान्या सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह चै पर हर दोए। दूर दर्द माथे अमृत खाए, गुरमुख बूझे एक समाए। तेरे दर्शन को केती बिललाए, विरला को चीनस गुर शब्द मिलाए। रहाओ बेद वखाण कह एक कही है, ओह बेअंत अंत के लही है। एको करता जिन जा किया, बाज कला तर गगन तरिया। एको ज्ञान ध्यान तुन बाणी, एक निराल मवा कथ कहानी। एको शब्द सच्चा निशान, पूरे गुर ते जाने जान। एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुजुग सोई। अनहद राता एक लिवतार, ओ गुरमुख पावे लख्या पार।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपते आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एहरुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम ते आएंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन ते आयन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाऊं तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़ने से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्योर साए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्स छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कहे कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਣ ਆਹੇ ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

अपहगे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे, इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दिनी कारा, कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान, वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म, बसंत बाणी नाम दे।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत निजर बाजै काया डूबै केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला रहाओ अनल बेड़ा हो खेव ना सकौ तेरा पार ना पाया बीठला हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा नामा कह हौ तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हागती जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ धोबी धोवै बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देओ रम रहया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवै काओ तू काए गर्भ बावली जैसे पांदो खूंबराज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध ढूंढे परदेश आप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुवार पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकारे पियो पियो साधु की जो लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपै नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमकबाल इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के तू मत ही जाहे रहाओ चाकी चट्टे चून खाहे चाकी का चीथरा कहां ले जाहे शीके पर तेरी बहुत डीठ मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ कह कबीर भोग भले कीन मत को मारे ईट टेम राग सारंग चौब दे महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद अपने ठाकर की हों चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हम मैं मारन बेरी रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे लिया मन मेरा समझ सो शब्द विचारे मन मुख हीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे हाँ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी अकोल निरंजन स्यो मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर्व वेख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा हर कै नाम रती सुहागन नानक राम पतारा सारंग महला पहला हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै जेहवा साधना फिकी रस बिन बिन प्रभ काल संतापै रहाओ जब लग दर्शना परस है प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखते ही मन मानिया जल रस कमल बेगासी ऊनव कनहर गरजै बरसै कोकल मोर बैरागै तरवर बिरख बिहंग भयंगम कर पिर तन सोहागै कुचर करूप कुनार कुलखनी तिरका सहज न जानिया हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया आए न जावै ना दुख पावै ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सह सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ इन बिद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी।